एक हरि स्वामी बातों करता था, गुणादेन स्वामी बातों करता था, तो भगत जी ने थयू कि जी आ स्वामी ने उठवू पड़े से, आ मोटो माणस से सरभरा माटे। स्वामी बारोबार भगत जी बारोबार पता दीद समझाई ने बधु कर, तो जो अनुभूति समझी ने बधु करूँ। स्वामीनारायण भगवान की जय।

ऐश्वर्यमुक्तो लयी शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालु ने नित नमो सर्वावतारी हरि। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद।